किया। पंकज महो पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलया। रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़या, मूरख मुग्धा जन्म भया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाही विसरया। आसा महला पंजमा, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया।

चित की इच्छा, तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो, आप हाथ दै मोहे बचाव हो।

सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछान, कट कट के पट पट की जान, जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब तारें, आप आपनी बूझ उचारें, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम।

जानत महा मूड कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीन तन है पिव आप अपनी बुद है जेती बरणत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज से तज कीनी उतपुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा है बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आज जुगात स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख्य बार असिख्य संघरो

सब काला, दुष्ट अरिष्ट टर तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मैं हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट छा छह सक न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते तह उबारा। जिन

कर जग माता, ग्रंथ करा पूरण शुभ राता, किल विख सकल दे को हरता, दुष्ट दौखियन को छय करता, श्री अस्तुज भय दयाला, पूरण करा ग्रंथ तत्काला, मन

सौ पांच चरित्र समापत मस्त सब मस्त अफजू दोहरा दास जान कर दास पर की जय कृपा अपार आप हाथ दय राख मोहे मन क्रम बचन विचार चौपई मैना गिन सै प्रथम बनाओ किसन बिशन कब हूँ न त्याओ कान सुने पहचान न तिन सो लिव लागी मोरी पग इन सो महाकाल रखवार हमारो महालो मैं किंग कर थारो अपना जान करो रखवार बाहे गहे की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत पर चुन चुन।

संघारो प्रथम तरो भगवत को ध्याना बहुर करो कविता विदनाना कृष्ण जथाम चरित्र विचारो चूक होए कब लेहो सुधारो कवियो बाच दोहरा नो दो जो निज प्रभ मो सो कहा सो कहो जग मा है जो ते प्रभ को त्याय है अंत सुरक को जा है दोहरा हर हर जन दुई एक है वे विचार कछ ना है जल ते उपज तरंग ज्यो जल ही बिखै समा है दोहरा जब आयस प्रभ को भयो जन्म तरा जग आए अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुनाए कवे बाच दोहरा ठाड़ पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ त्याय है संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा काल पुरख की दे मो कोटक विष्ण महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते रव सस्क्रोर जलेश दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत सुर्ग बास रघुभर करा सगरी पुरी समेत चौपई जोए कथा सुने अर गावे दुख पाप ते निकट नयावे विष्णु भगत की ये फल होई आद व्याद छह सके न कोई संवत सत्रह सैस पचावन हाड़ बदी प्रथम सुख दावन तव प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा फूल परी लोह लेहो सुधारा दोहरा नेतर तुमके चरण तर स्तुद्र तीर तरंग श्री भगवत पूरण कियो रघुबर कथा प्रसंग साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरण कियो भगवत कृपा पर

मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक न जान्यो श्री स्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ कर।

आनंद भया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां बाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावले आइया शब्दो तगावो हरि केरा मन जिनी बसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब भी सारना अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सवारना सब ना गल्ला समरथ स्वामी।

जिसे मृत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की।

जिस पास बैठे हैं सो ही है, सबना दा विसार। वाहिगुरु जी राग सूही अष्टपदिया महला चौथा घर दूजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद कोई आण मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा। हों तिस पह आप विचाई दर्शन हर देखन कहताई। कृपा करै ता सतगुर मेला हर

प्रसाद मौन मानु प्रणाम गुण गण मदाम हर भर अगंज हर नर प्रपांजे अन गण प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड भर नर मांडे अन पहनासु मौन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मदाम अंश जंग आसन भंग उपमा पार गत मित दार जल थल अमंड दिस विस्पंड जल थल महंत दिस विस्यंत अनपहनासु त्रेतर त्रास आजन बाहे कसदा हो ओंकार आदि कथनी नाद खलखन ख्याल गुर बिरकाल कर कर प्रणाम चित चरणा मन चित गात अर्जन बात अन चंद गात अरंज बात अर टुट भंडार अन ठट पारु आडीठ धर्म आत ठीट कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद ता प्रसाद करणालय है अरकाल है कल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वर्ण है तृत के धरण है जाके करण है मन माने है जग जाने सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपास है सर्वनास है करणा कर है विश्वंभर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है पारति पर है करण कर है जप जप है थपा थप है कृता कृता है अमृता अमृत है अमृता अमृत है करणा कृता है कृता कृता तरणी त्रित है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृता अमृता अमृत है अजबा कृता अमृता अमृत है नर नायक है खल कायक है विश्वंभर है करुणालय है नृपनायक है सृपायक है पवपंजन है अर्गंजन है रुपतापन है जपचापन है अकलंकृत है सर्वकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्मा है सर्व आत्म है आत्म बस है जस के जस है पुजह प्रयात संदे नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नम बीज बीजे नमो राज संताम संसात रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्र नम ध्यान ध्याने नमो ज्योत ज्योति नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सात रूपे

त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कमे कचरी छंद अजय अलय भय भय अपू अजू अनास कस गंज पंज लख पख अकाल दयाल अलेख भेखा नाम कम गह टह नाथ प्रमथ अजोनी मोनी न रागे न रंगे न रूपे न रिखे अकर्मंग परमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल अनामे समस्तल निमासे निरकामंग बेपूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सो धर्मंग बेपूते सदा सच दनंद स्तरंग प्रणासी करिमल कुनिंदा समस्तल निवासी अजाय भूते गुजाब गुनी में हरियंग करियंग करिमल रहीम में चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते सुजयम भव सुभम सर्वदा सर्वयुक्ते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग बेपूते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग बेपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाह ही दसवें त्वा प्रसाद सवैये सराबग सद समूह सिद्धहन के देख फिर घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो प्राण सारे ही देश को देख रहे हो मात को न देख प्राणपति के श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते एक रति मन एक रति के माते मतंग जर जर संग अनुपा तंग सरंग सवारी कोट तरंग कुरंग से कूद उत्पन्न कुगन को जतन वारे पहाड़ी पुजान के भूपलि बेदो न्यावत शीस न जात बिचारी इत भय तु कह भय भूपत अंत कौ नंग ही पाए पधारे जीत फिरा सब देश दसान को बाजत टहल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गुजान सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भगवान के भूपत कौन गण नहीं जात बचारे श्री पासरी भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सुधारे तीर्थ नान दया दमदान सो संजम नेम अनेक सिखाए वेद पुराण कते पुराण जमीन जमान बहन के पेखाए पावन आहार जति जत हरो सब सुब चार हजार क देखाए श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिखाए शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाहा सुशासना दुर्जान दरांगे भारी विमान भर मन मैं कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीन मरोर मुआसन माते मतंगण मान मलेंगे श्री पासी भगवान कृपा बिन त्याग जहान दान चलेंगे वीर पार बड़े बीरे अरब चार हसार की धार पछैया तोर देश मलेंद मुआसन मातिक जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चकचार नवैया साहिब श्री सब को शरणायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव पनिंदन सातर भूत भाण जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थप थपेंगे था

दिशा मैं काहू पछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो पूर करिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो कुर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाचो बेनती चौपाई खमरी करो हादर छांग पूर्ण होए चित की छांग तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमारे दुष्ट बतम काब हो आप हाद मोह बचाव हो सखी बसाय मोर परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिय सब रण कौ आसंगरिय पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की राह प्यासा तुम चाड़ कोई अपना ध्यान जो बरचाऊ सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सतर हमारे मारिया है आप हाँ दम जरे आए मरण काल का त्रास निवरे आए हो जो सदा हमारे पछा श्री अस्तो जो करे हो रक्षा रख ले हो मोह राखण हारे साहि संसह प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तमह पुरी चतुर दसकंता काल पाए ब्रह्मा अवतरंग काल पाए शिव अवतरंग काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सगल काल का की आत्मा सा जवन काल जोगी शिव की ओ वेदराज ब्रह्मा जूथी ओ

अंतिकाय अवतार सोई गुरु समझे हमारा। नमस्कार तिसे को हमारी सकल प्रजा जिन आप संवारी, सेवकन को साब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोहबत कियो। कट कट के अंतर की जान तो, पले बुरे की पीर पछान तो, चिट्टी ते कुंचर असूला, सापर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के पड़ पड़ की जाने। जबद कर करा करता राम, प्रजा तर तब देह पारा, जब या कर कर तो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ।

संसारा एक रूपानुप स्वरूपा रंग भयो राव कहि भूपा अंडज जीरज सेतज किनी ओतवज खान बाहर रथ दीनी कहु फूर राजा हो बैठा कहु सिमट भय शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचम पव आद जुगाद स्वरूप सृजम पव अवरक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेस करो रण काता जी अस्त हो जो तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख हमरे पुरख जाऊन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए है ताकि काल निक न है रक्षा होता है सब काला दुष्ट अरिष्ट अनंत काला कृपा दृष्टन जान हर हो ताकि ताप तनक में हर हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुर्ठ छा छप सके न कोई एक बार जिंत में संभारा काल फास्ती ताहु बारा जिन नर नाम तिहारो कहा दर्द दुर दुख ते रहा कड़क केत में शरण तिहारी आप हाथ ले हो भारी सर्व ठोर मोह सुहाई दुष्ट दुख ते ले हो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को छ करता श्री अस्तोज भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावे सोई दुख नत सव्यापत कोई अड़िल सुनै गोंग जो जाहि सुरस न पावई सुनै मूड चित लाई चतरता आवई दुख दर्द पाव निकट नंग तिन नर के रहै हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पुण जय अर्ध सहस पुण तीन कही जाय भाद्रव सुधी अष्टमी राम।

ने कहे मत एक न माने उन सिमरत शास्त्र वेद सबाई भव भेद कहे हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुम्हारी कर मैं न कहो सब तोहे बखाने दोहरा।

रत्न समाणी पीबह अमृत सदा रहो हरंग जपिहु सारंग पाणी कह नानक सदा गावो एह सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित कर हर स्ना

उनसे भी सकते हैं आपको उपाय क्या करता है आप हुक्म बरताए हुक्म बरताया वेखा गुरमुख साहब बुझाए तोड़े बंधन होवे शब्द तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन मसावे गुरमुख जिसनू आप करे सो होवे एक सस्यों लिव लावे कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए

श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता सत महत दिवस रात दाई दाया खेला सगल जगत चंगे।